सूक्तनाम् हव्रष्टनाम् वैष्टाङ्गो हि औथ च चित्रेमशौने अशैम् वहु वैष्टैमस्ते उष्टास्ते उष्टौ मायतशाय वैष्टाय अशैम् विस्पाहु माता विस्पाहुक्ता विस्पाहव्रष्टा बौटो वरष्टा विस्पा दुष्मता विस्पा दुषुक्ता विस्पा दुष्वरष्टा नोइक् बौटो वरष्टा विस्पाहु माता विस्पाहुक्ता विस्पाहव्रष्टा वैष्टै मङ्गोयम् अशैता विस्पा दुष्मता विस्पा दुषुक्ता विस्पा दुष्वरष्टा अचिष्टे मङ्गोहिम् अशैता विस्पनाम् च हुमतनाम् हुक्तनाम् अव्रष्टनाम् वहिष्टाङ्गोयि औथ च चित्रे मशौने अशिम् वहु

दरेगो फ्रतिमत्विं च अंगाओ दिन्याओ यत उरोईश जरथुष्ट्रोईश असिस्नो अंगहत हच विसद गाउष पुया।

मा यवे इमत नमानेम खात्रवत खरेनो व्रजहि। मा खात्रवैति इष्टीश मा खात्रवैति आसन व्रजन्ति।

कोए वस पराई आप गर्व करे मूर्ख आप गणाए नानक बिन बूझे कने ना पायो फिर आवे जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना विछड़े कबू जे आप मेले करतारे अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख निवारे हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उर तारे मन मुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे उन्हां दी आप पत रखसी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया पुत्र कलतर नित वेखै विकसै मोह माया देश परदेश धन चोराए आण मोहे पाया अंत हो वै वैर विरोध को सकै ना छडाया नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया श्लोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए तृष्णा मूल ना होवई नाम वसै मन आए बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन तहाए नानक रस का सो शब्द सलाहना आपे लय मिलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए बिन शब्द जग अंधेर है शब्दे प्रगट होए पंडित मोनी पढ़ पढ़ थके पेख थके तन धोए बिन शब्द किने ना पायो दुखिए चले रोए नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए। पौड़ी स्त्री पुरख है तने हो बहमंद पकाया तिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया क्यों रही है थिर जग को कड्डो उपाया गुरपुरे की चाकरी थिर कंध सवाया नानक बख्श मिलायन हर नाम समाया। श्लोक महला तीजा माया मोहे विसारिया गुर का पौहे त्यापार लोभ लहर शुद्ध मत गई सच ना लगे प्यार गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दर गए मुख द्वार नानक आपे मिल लय आपे बख्शन हार। महला चौथा नानक जिस बिन